क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen

0: radio station for people who love music.
1: Buzz on 97.1 FM.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats. Wow,
2: FM. Only Tune Super Hit Channel.
3: Fizz on 97.1 FM.
4: It's commercial time.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
11: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
12: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
11: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
12: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
11: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: You are listening 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: It's
16: music never sounded better.
17: Fizz on 97.1 FM.
18: I love it.
2: When you're faded and you are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
6: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
5: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप
3: फिल्मी
1: गाने

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत

0: मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
1: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जात। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती, चाहे ढल जाए पूरी।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: For digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao.
2: Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए।

0: Banking Road, Nottingham, या अभी राब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
7: hayatweddings.co.uk.
8: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM

0: और जुमातुल मुबारक के बाबर के दिन के हवाले से आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा बरकतों वाला दिन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इसको सरदारुल अय्याम कहा है, यानी पूरा वीक हम जैसा भी गुजारते हैं, जिन असनाम में भी हम गुजारते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास रहती है जो सिचुएशन कभी ना कभी थोड़ी सी हमें उस लेवल पे पहुंचाती है, जो सिचुएशन अक्सर हम पूरे वीक इग्नोर करते रहते हैं। कभी हम किसी का दिल दुखाते हैं, कभी हम किसी को ऊंची नीची बात में बात करते हैं, या कभी हम किसी से ये शिकवा करते हैं कि भैया आपने मुझे टाइम नहीं दिया। लेकिन आजकल का दौर है और स्पेशली हमारे इंग्लैंड का या पूरे यूके का या नॉटिंगहमशायर का जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम देश इस देश के परदेश में और इस परदेश के देश में सर्वाइव कर रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप के हम शिफ्ट्स करते हैं, तीन तीन टाइप के हम शिफ्ट्स करते हैं, और उसके बाद फिर एक लंबे अरसे के लिए हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी हमने अर्न किया वो तो टैक्सेस की मद में HMRC को और उसके अलावा जितने भी हम ऑफिस के कंप्लाइंस है उसमें हम प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर अ सिविलाइज्ड नेशन। और हम इस सिविलाइज्ड माशरे में इंग्लैंड के स्पेशली नॉटिंगहमशायर के कितना छोटा सा कितना ज़बरदस्त कितना खूबसूरत सा शहर है हमारा, और हर जगह पे लोग हमें अपनायत वाले मिलते हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी हमेशा इस चीज़ की तगुदो में रहती है, और स्पेशली जो रेडियो 97.1 FM या जितने भी हमारे बाकी प्लेटफॉर्म हैं जो वर्क करते हैं साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के लिए, यह बताया जाता है कि उनके पास मेन जो फोकस है वो फोकस किन चीज़ों का रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का रहता है कि दिल लगा के मेहनत करनी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इरशाद है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक मनकूल है, या अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात कभी माफ़ फरमाए कि हलाल रिस्क अहम इबादत है, हम उस हलाल रिस्क की तलाश में रहते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब हलाल रिस्क अहम इबादत है, आप गालिबन जो उलमा फुकहा मेरे साथ मौजूद हैं या अगर मुझे सुन रहे हैं तो ना चीज़ की गलती समझ के इसको माफ़ कीजिएगा, अगर गलत है तो फिर दुरुस्त कीजिएगा। कुरान पाक में गालिबन इरशाद है, मफहूम है कि तुम्हारी नमाजें तुम्हारे रोज़े तुम्हारे सदके ओंधे मुँह तुम्हारे मुँह पे मार दिए जाएंगे, अगर कबूल ना हो आपकी नमाज आपकी सजदा आपकी हर चीज़ कबूलियत में कब आएगी, कबूलियत में तब आएगी जब आप उसको खुशू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे। लेकिन इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अच्छे अखलाक हैं, गुड मैनर्स, यानी आप किसी से अगर बात करते हैं तो फिर कैसे करते हैं, अगर आप किसी को सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, अगर आप किसी
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

जी तो लिसनर, वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। हमारे दरमियान हाई लू थी कमर्शियल ब्रेक और काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी समय के बाद जब कोई प्रोग्राम करें ना तो ऐसा ही होता है। थैंक यू वेरी मच आपके कुछ मैसेजेस मेरे तक पहुंचे जनाब। मैं दोबारा से हाजिर हूं और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है बिल्कुल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। बात में कर रहा था जनाब अच्छे अखलाक की, और अच्छे अखलाक में बात चल रही थी हिकायत सादी की।

0: के, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी, वाइब भी।

अलावा जी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और एहसास लाइए अपने होने का। मेरे स्टूडियो के अलावा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, विच इज 01157100971, ताकि आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ हमारे लाइव प्रोग्राम में और बताएंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम और किस जगह पे कौन सा पॉइंट कैसा लगता है। और डेफिनेटली अब आवाज़ भी ठीक हो चुकी है, क्योंकि मुझे एक ज़बरदस्त मैसेज आया था कि जनाब आपकी आवाज़ कम आ रही है। तो पहले मैं ये कहने लगा था कि जनाब आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन थैंक यू वेरी मच आप जो भी हैं, जिसने भी हमें इतना खूबसूरत सा मैसेज किया। अब अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर अपने नाम के साथ, पोस्टल कोड के साथ भी मैसेज कर दें कि एवरीथिंग इज गुड एंड यू जस्ट सेंड द थम्स अप। चलें कोई बात नहीं, आप थम्स अप आ गए, इट्स मीन एवरीथिंग इज गुड, कूल एंड काम। तो जनाब बात हम कर रहे थे

اچھے اخلاقیات کی. اور جو ٹاپک میں نے پیچھے چھوڑا تھا اس میں یہ تھا کہ نیکسٹ جو ہمارا دور ہے اچھے اخلاق کا وہ کیا ہے, کہ ہم اپنے اندر وہ وسائل لے کے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں. اب میں بات کروں ایک میچور پرسنالٹی کی. ایسے لوگ جو اگر آپ دیکھیں نا کہ جب ایج آپ کی 21 to 30 ہوتی ہے, دین یو آر اے میڈیوکر آف اینی ایرا, یعنی آپ کسی زمانے کے مڈل پرسن ہوتے ہیں. اگر آپ کی ایج پھر 31 to 40 کے جو لوگ ہوتے ہیں اس ایرا میں, اس زمانے میں, یا اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سارا بوجھ اپنے سر پہ, اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے جناب 41 to 50 ایج لمٹ. اس ایج لمٹ کے جو لوگ سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں یہ لوگ بہت پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ اپنے آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی سنیری ہو, وہ کوئی بھی ڈائیورسٹی ہو, اس میں وہ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایج کا جو فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے سامعین ذی وقار 51 to 60. اب یہ جو ٹینیور ہے یہ ہے ایکسپیرینس. یہ وہ لوگ ہیں جناب جو زندگی کے سارے خد و خال, اونچائی نیچائی گہرائی, یعنی ان کی جو زندگی کا گراف ہے وہ ایک ای سی جی کی طرح چلتا ہے بالکل, کہ وہ بالکل اس کو نا ہر چیز کو پرکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر تجربات سے اپنے آپ کو کہا کرتے ہیں. اور 60 کے بعد تو ڈیفینیٹلی ہمیں بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے. اب جو ایج آپ کے پاس 21 to 30 ہے, یہ ایسی ایج ہے جس ایج میں ہمارے بچے, یعنی ہمارے جو یہاں کے بچے ہیں, جو یہاں گرو اپ ہوئے ہیں, یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور ٹھیک ٹھاک اسٹریٹ فارورڈ ہیں, کیونکہ ان کو ایک اچھا معاشرہ, اچھی سویلائزیشن ملی ہے اور انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا, جس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اب بات جو میں کر رہا ہوں سامعین, ریلیشن میرا اچھے اخلاقیات, گڈ مینرس کی طرف ہی ہے. اب اگر وہ بچے کبھی کبھی اسٹریٹ فارورڈنیس میں اپنے تائے, چاچے, انکل یا کسی کے ساتھ کچھ چھوٹی سی بدتمیزی بھی کرتے ہیں یا کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو ظاہراً طور پہ بڑے دل خراش ہوتے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ جس معاشرے میں پروان چڑھے ہیں اس معاشرے میں ان کا جو لیول ہے, ان کی جو سلینگ لینگویج ہے, وہ کچھ خاص مختص سینٹینس میں آتی ہے جس کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کے بعد جب میں نے بات کی نا کہ جو ایج 31 to 40 ہے یہ میچور ایج ہوتی ہے, اس ایج میں آپ نے اخلاقیات کے وسائل کو جانچنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو یہ کہنا کہ بیٹا سچ بولو, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کی پرسنالٹی کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا, پھر آپ کو سچ بولنا پڑے گا. یہ وہ وسائل ہیں جو آپ کے اندر ہونے چاہئیں, یہ وہ ایویلویشن ہے جو آپ نے اپنی ذات کی کرنی ہے. اور جب انسان اپنی ذات کی ایویلویشن اچھے اخلاق کو پانے کے لیے کرتا ہے تو پھر انسان کو اس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ اگر میں روزہ کر لوں, نماز کر لوں, لیکن میرے سے میرا پڑوسی تھوڑا سا خفا ہے, میرے سے میرا وہ بندہ تھوڑا سا خفا ہے جو بندہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, میرا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے, میرا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, میرا کزن ہو سکتا ہے, میرا یار دوست ہو سکتا ہے, وہ انسان جو ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں, کبھی کبھی بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ خاموش سمندر, خاموش سمندر یعنی خاموش پانی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھیں اپنے عزیز و اقارب اپنی یا اپنے خاص بندے میں, تو پھر بالکل بھی دیر مت کیجئے. یہ وہ دوسری فیسلٹی ہے, یہ دوسرا وسائل ہے, یہ دوسرا وسیلہ ہے آپ کے پاس, یا دوسری سرکمسٹینسز ہیں ایسے کہ جس میں آپ فائدہ کما سکتے ہیں. آپ اس وقت اپنی اس کیپیسٹی کو یوز کریں اور پھر اس سے وہ اظہار کر دیں کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں. اگر تو وہ غلط ہے تو وہ پھر اس چیز کو بتائے گا کہ نہیں یار, آپ کوائٹ بزی, میں بزی تھا, میں رپلائی نہیں کر پایا یا وٹ ایور, لیکن آپ کے پاس یہ وسائل ہونے چاہیے. تیسرا, وہ اسپیشلٹی آپ کی جو اچھے اخلاق کا پیش خیمہ بنتی ہے, جو اچھے اخلاق کو بتاتی ہے, جو اچھے اخلاق کا ماڈل, ایک نمونہ آپ کو دیتی ہے سامعین, وہ جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ اسپیشلٹی کیا ہونی چاہیے؟ وہ اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹا کس طرح بات کر رہے ہو, یار میرے بھائی کیسے بات کر رہے ہو, میرے دوست کیسے بات کر رہے ہو, تو پھر آپ کا لہجہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ اس اسنا میں یا اس طرز میں بات کریں گے نا اس سے, تو یہ وہ فیسلٹی ہے جو آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں رہے گی, آپ کی بات کا اثر نہیں رہے گا, آپ اچھے اخلاق کے جو ترازو ہیں اس ترازو کے پلڑے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے, اور پھر آپ اس پلڑے سے ہلکے سے باہر
खिसक गए, गिर गए, तो फिर आपके जो बची कुची जिंदगी है, जो बची कुची इज्जत है, सॉरी टू से आई एम यूजिंग अ वर्ड, के हमें जो साउथ एशियन कम्युनिटी स्पेशली जो हमें सुनते हैं उनमें ये बात समझना आसान हो, वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर इस चीज़ को मॉडलशिप में लेके आते हैं कि यार खुद तो उसने कहा है कि अच्छे तरीके से बात करो, लेकिन उसका लहजा देखा था बात करने का। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, ओए तुम्हें इंसानों की तरह बात करने का नहीं पता। अब अगर ये बात हम उसको ऐसे कहें कि यार आपको अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, लहजे में कितना फर्क है, ये कैपेसिटी आपके अंदर, ये वसाइल आपके अंदर, ये रीज़न आपके अंदर, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब ये सारे वसाइल आपके पास होंगे, जब आप इस चीज़ के बारे में बताएंगे, तकरीबन 20 से 22 स्पॉट्स हैं ज़िंदगी के जो बनते हैं अच्छे अखलाक को अपनाने के लिए। ये वो सारे वसाइल हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर होंगे। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल हमारा जो आज टॉपिक है अच्छे अखलाक है, क्योंकि इस चीज़ की हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में बहुत है, बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग ये कहते हैं, सामीन अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा डेफिनेटली, नहीं तो फिर मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा 01157100971 पे मैसेज करके। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना कि जनाब इसकी ज़ुबान में तो शक्कर और घी घुला हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत चर्ब ज़ुबान है। चर्ब ज़ुबान जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये सामीन ज़हन में रखें कि अच्छे अखलाक में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे लोग जो वक्ती तौर पे तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन जो ही वो मुंह फेरें या रुख फेरें तो आप वो आपकी आस्तीन के सांप हो, या फिर आपकी आस्तीन इतनी ढीली हो कि आप कभी वो बाहर निकले तो उनको ये शेर सुना दीजिएगा कि अब तू तो मेरा यार था, तू निकल गया मेरी आस्तीन से। दुनिया सांपों को अक्सर मार देती है। तो जनाब जो सांप होते हैं वो फिर आस्तीनों से जब निकल जाते हैं, आप तो उनको यार समझते हैं, लेकिन ये फितरत है डेफिनेटली। अगर नेचर में ये चीज़ नहीं होगी, कुदरत में ये चीज़ नहीं होगी, या वो लोग दुनिया में नहीं होंगे, तो फिर अच्छाई बुराई का जो पलड़ा है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। हमने अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपने आप को अच्छे अखलाक की तरफ लेके जाना है। फिर अब अगर हम बात करें पांचवी निश की, जो पांचवी लाइन है, जो फिफ्थ रो है, जो फिफ्थ क्लॉज है, जो फिफ्थ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पांचवा लॉ है वो कौन सा है कि जनाब आपने चर्ब ज़ुबानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर आप थके हुए भी होंगे तो हल्की सी थकावट आपके लहजे में ज़रूर आएगी, लेकिन लहजा बिल्कुल पाक साफ और खुशगवार रहेगा। और लहजा जितना खुशगवार सामीन आप रख सकते हैं, जितना खुशगवार लहजा हमारे पास रहता है हमारा, वो हमें बेसिकली ये बताता है कि हमने आगे करना क्या है, हमारे पास आगे टीम वर्क क्या है, हमारे पास आगे लोग कितने हैं, हमारे पास आगे ऐसे लोग जो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार हम किसी का भला करें। हम मुख्तलिफ एनजीओज हैं पूरी दुनिया में, हैं हर जगह पर, कहीं भी आप देख लें, कोविड आया तो मुख्तलिफ एनजीओ ने हर जगह पे, हर इंसान ने अपना काम किया। कुछ लोगों ने छुपा के किया, कुछ लोगों ने अलग ऐलान किया, कुछ रगबत के लिए करते हैं, तरगीब के लिए कि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो डेफिनेटली जब आप अच्छे अखलाक लोगों को दिखाने के लिए करेंगे ना, तो फिर नीयत जहन में ये रखें, आपकी माइंड सेट ये होना चाहिए कि आप बेसिकली तरगीब के लिए अपना चर्चा कर रहे हैं, तरगीब के लिए आप अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ द रीज़न ऑफ गुड मैनर्स, दिस द रीज़न ऑफ अच्छे अखलाक, हम अच्छे अखलाक को अपने साथ लेके चल सकते हैं। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं लोगों के सामने, तो फिर ये वसाइल आपको रखने पड़ेंगे। अगर छठी निश आपकी पाँचवीं निश के साथ मैच नहीं करती, यानी उस लॉ को बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करती, वो लॉ कौन से, जो सिक्स रो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अखलाकियात में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड मैनर्स में, जो मैं कह रहा हूँ कि वसाइल आपके पास हों, जरूरी नहीं कि वसाइल कारोबार के लिए आपके पास हों, अच्छे अखलाक डिलीवर करने के लिए जो वसाइल चाहिए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका वक्त है। आप अपना वक्त निकाल सकते हैं या नहीं अच्छे अखलाक के लिए, अपने आप को थोड़ा सा मुख्तस करें रोज़ हाफ एन आवर, कि आज आपने 30 मिनट जिंदगी में उस इंसान से अच्छे तरीके से बात करनी है जिससे आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। समझ, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी और इतने खूबसूरत अच्छे अखलाक हमारे बन जाएंगे कि वो इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, आप उससे बात नहीं करना चाहते, कोशिश करें, इट्स वेरी टफ, लेकिन कोशिश करें कि 30 मिनट्स, हाफ एन आवर,
20 मिनट्स, 15 मिनट्स उस बंदे से फोन पे, ईमेल पे, मैसेज पे, वॉइस नोट पे, कहीं भी है दुनिया में, किसी जगह पे भी है, तो आप उससे एक अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे अखलाक से बात करें, कोशिश करें। ये जो प्रैक्टिस है ना आपकी, ये प्रैक्टिस आपके अंदर की जो मैं है ना उसको ख़त्म करने में बहुत ही कारामद सामद होगी। और उसके बाद जब आप अच्छे लोगों की सफ़ में शामिल होंगे तो फिर कौन से अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग वो होंगे जिनकी सफ शुरू ही आपसे होगी, सफ आरा ही आप होंगे। और फिर कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन एक बड़ा ज़बरदस्त सा डायलॉग बोला था, उन्होंने कहा ना कि जनाब कहाँ पे है, लाइन में खड़े हो जाओ। तो किस मूवी का डायलॉग है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो मुझे बताइएगा। वो जनाब ये है कि हम जहाँ शुरू खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो फिर आप जब उस सफ का पहला फर्द बनेंगे तो फिर आपके पीछे एक मुआशरा चलेगा। फिर जब मुआशरा, जब सोसाइटी आपके पीछे चलती है, एक कम्युनिटी आपके पीछे चलती है, तो फिर लोग आपके नाम से जाने जाते हैं, लोग आपकी पहचान बनाते हैं, लोग आपको समझते हैं, लोग आपको समझाना चाहते हैं, और फिर लोग आपको बताते हैं कि आप ही ऐसे हैं जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय इन द शेप ऑफ मैनर्स। इसके मैनर्स, इसकी वैल्यूज़ बहुत ही अच्छी हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देने की, बच्चों को रिस्पेक्ट देने की, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आने की, महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की। वो किसी भी सूरत में, वो माँ, बहन, बेटी, फ्रेंड, या आपके नेबर, आपके स्टूडेंट, आपके टीचर, किसी भी सूरत में है, या एक्स वाई जी नॉर्मल है, कोई भी किस नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास जमे गफीर है, मुख्तलिफ किस्म की नेशनैलिटीज़ होती हैं, किसी जगह पर भी है, तो फिर ये कोशिश करें कि आपके पास अखलाक के वो पैकर हों, आप उस मुआजने को उस तराजू में अपने आप को रख सकें, फिर आप अपना मुआजना कर सकें, फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकें, और फिर लोगों को ये बता सकें कि यार अच्छे अखलाक का मतलब ये है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड मैनर्स। एक छोटा सा ट्रैक में फिर से प्ले करूँगा, लेकिन एक मैसेज में पढ़ लूँ, आप थोड़ी सी देर के लिए बीजीएम सुनिएगा ज़रा।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह से खुश आमदीद कहते हुए सामिन इज़्तिकार एंडी लिसनर्स आपको बताते चलें कि जनाब जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन और ये वेलकम स्वागतम उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जनाब एक बार फिर फ्रेश कर लीजिए अपने आप को। जनाब आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे सर्च बार में रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में अफसा लिखा आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, कैट कीजिए और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी समादों की नजर। और जनाब आपको ये बताते चलें कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप live.radiofta.co.uk और अलावा से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं जितने भी आरजेस हैं 1157100971 पे मैसेज कीजिए और एहसास दिलाइए अपने होने का। इसके अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है लाइव जनाब वो भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर टिकटॉक फेसबुक, आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एहसास दिला सकते हैं अपने होने का। ये जनाब वो सारी चीज़ें हैं जो आप के लिए हमने मुख्तस की हैं कि आप हमसे रابطے में रहें। लेकिन जी टॉपिक को मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, उसके बाद तुम्हें गोरख धंधा हो डेफिनेटली वो प्ले होगी। जनाब ज़बरदस्ती एक बात मैं करने जा रहा हूँ, कहते हैं कि जनाब अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। जी तो ये है जनाब लुबे लबाब आज के हमारे टॉपिक का, आज के गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का। बिल्कुल जनाब कोई इस पे महंगाई आपको नहीं आएगी, जितने भी वसाइल आपके पास मौजूद हैं उनको ब्रुएकार लाते हुए आप एक अच्छी सी दुकान खोल सकते हैं। फिर जो मैंने कोट बयान की कि वो दुकान कोयले की होगी या हीरे की होगी ये डिपेंड आप पे करता है, वसाइल आपके पास कैसे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लॉ आते हैं, कौन कौन सी ऐसी क्लॉजेज हैं जो क्लॉजेज आपके लिए हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा मुख्तस और कार फरमा होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में मौजूद हैं। सिर्फ थोड़ा सा परखिए, देखिए, जानिए अपने आप को और अच्छे अखलाक के साथ आज दुनिया के सामने आइए और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कल कि आपने आज के दिन की क्या अचीवमेंट्स ली। लें जी स्टे ट्यून्ड इट 97.1 एफएम एंड डैब, इंजॉय कीजिए जनाब तुम एक गोरख धंधा हो। लेकिन जब ये खूबसूरत सा कलाम नुसरत फतेह अली खान का ये कवाली जब आप प्ले करते हो और मैं बड़े नवाक से सुनता हूँ, लेकिन जब ब्रेक आएगी कमर्शियल ब्रेक आएगी और उसके बाद मैं आपको गुड बाय नहीं कह सकूंगा तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। कवाली के बाद जनाब कमर्शियल ब्रेक आएगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा लेकिन अगला प्रोग्राम हमारा आपके साथ रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड इट फॉर द 97.1 एफएम, एंजॉय कीजिए तुम एक गोरख धंधा हो एंड योर होस्ट नासिर खान विल बैक अगेन टुमारो इंशाल्लाह डेफिनेटली। सैटरडे को भी आपसे गपशप रहेगी एंड गुड बाय नॉटिंघम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच

साथ ही साथ लिसनर्स आप सभी को बताती चलती हूँ कि रेडियो फजा 97.1 FM हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, अगर आप हैं एप्पल यूज़र तो सिंपली आपको जाना होगा गूगल स्टोर, लेकिन अगर आप तो मैं ये बता रही थी कि अगर हैं आप एप्पल यूज़र तो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर, और अगर आप हैं एंड्रॉयड यूज़र सो आपको जाना होगा गूगल स्टोर। वहाँ जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM, और आने वाली पहली एप्लीकेशन ही हमारी एप्लीकेशन है जिसका आइकन है पर्पल कलर का। सो डियर लिसनर्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और आपको रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, और अभी तक अपने इस दिन का आगाज कर चुके होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप हैं अभी भी सुस्ती और काहली में मुब्तला, तो घबराने की कोई बात नहीं, आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज। तो जी, बिस्तर छोड़ दीजिए, उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, चाय का एक मग उठाइए और बालकनी से बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा देखिए। जैसे कि लिसनर्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक खूबसूरत हेल्दी दिन का स्टार्टअप होता है एक खूबसूरत हेल्दी ब्रेकफास्ट से। बहुत सारे लोग हम में से ही ऐसे हैं जो कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना और कहना है कि सुबह के टाइम कुछ खाने को दिल नहीं करता और हैवी फील होता है, सो इसके चलते वो क्या करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रेकफास्ट आप सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए सन बाकी तमाम तर चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आप कभी भी अपने दिन का आगाज़ अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा दिन गुजारने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, दुनिया को फेस करने के लिए आपको ज़रूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर एक हेल्दी मील से। सो मैं हमेशा से यही कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी सभी लिसनर्स को, सभी सुनने वालों को, कि कोशिश किया करें कि आप जब घर से बाहर निकलने लगें तो कुछ खा कर निकला करें, क्योंकि आपको पूरा दिन बहुत मेहनत करनी होती है, काम काज करने होते हैं और इस दुनिया को फेस करना होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करेंगे, एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी तो फिर नहीं होगी ना। सो इसी के चलते चलते पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, मूड ऑफ रहेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेन रीज़न क्या है। सो कोशिश किया करें कुछ ना कुछ खा के घर से निकला करें। अगर आपको ऐसे फील होता है हेल्दी, थोड़ा सा हैवी, तो आप कुछ भी लाइट वेट खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया या फिर फ्रेश जूस, जो कि आपको उतनी ही अमाउंट में एनर्जी देते हैं, प्लस बिल्कुल भी हैवी नहीं होते। सो जी, यही कि एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें और अपने इस खूबसूरत से दिन की जर्नी को स्टार्ट करें। ज़रा बात करते हैं उन सभी सुनने वालों की जो कि हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, या फिर अभी घर से बाहर निकले हैं, सोच रहे हैं कि ज़रा अपने ऑफिस की तरफ रवाना होना चाहिए क्योंकि टाइम तो हो चुका है। सो अगर आप हैं रास्ते में या फिर आप हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो आप अपने इस खूबसूरत से सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं किस तरह से? हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के संग। तो आप हमें ट्यून कर सकते हैं फजा डैब के थ्रू। ये तो थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने सभी शेयर कर दिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि जब कभी आप ड्राइव कर रहे हों तो कोशिश किया करें कि फुल कंसंट्रेशन और फोकस आपका ड्राइविंग पे होना चाहिए, इधर उधर की उलझनों को या फिर ऑफिस की टेंशन, काम का लोड या इस तरह की कोई भी जो थॉट्स
صبح صبح ہر ایک انسان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو کچھ لمحوں کے لیے سائڈ پہ کر دیا کرے، کیونکہ ڈرائیونگ بہت ہی ڈینجرس کام سمجھا جاتا ہے میرے خیال سے. اور اکثر جب کبھی میں روڈ سے گزر رہی ہوتی ہوں تو میں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ڈرائیونگ بہت مشکل ہے اور اس قدر ٹریفک ہوتا ہے روڈ پر، اور میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اگر کبھی مجھے ڈرائیونگ کرنی پڑی تو میں کیسے کروں گی. سو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا پورا فوکس رکھا کریں تاکہ آپ انفارچونیٹ حادثات سے بچ سکیں اور کسی بڑے نقصان کا موجب نہ بنے. تو دی لسنرز، ڈیوا ڈائیلاگ کے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. شو میں کریں گے بہت ساری گپ شپ، ہر طرح کے موضوعات پہ بات چیت. جیسا کہ ہے آج جمعۃ المبارک، تو اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. لیکن شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام سے. تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام عابدہ پروین صاحبہ کی آواز میں، اور کلام سے واپسی پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.

जी लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? जी तो लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप को इसी तरह से ट्यून करते रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डेप।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से सभी सुनने वाले लिसनर्स को खुशामदीद। और दुनिया में आप जहाँ कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, तो तहे दिल से एक बार फिर से वेलकम। तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें लेट ज्वाइन किया है, तो एक बार फिर से उन सभी के लिए बता देती हूँ कि 01157100971 है आपका और मेरा रابطے का नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो डियर लिसनर्स, अगर आपकी है कोई भी पसंदीदा फरमाइश या फिर आप चाहते हैं कि आज से सके है तो मतुल मुबारक इस हवाले से हम किसी चीज़ पर डिस्कशन करें, या फिर कोई आपका पसंदीदा कलाम शो में शामिल करें, तो वो आप हमें बता सकते हैं। आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफ़िल किया जाएगा। सो दे लिस्नर, जैसा कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के हवाले से यही एक चीज़ के जिस तरह से हम वीक के बाकी डेज को देखते हैं, तो फ्राइडे और वीक के बाकी दिनों में कुछ हल्का सा ही डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि फ्राइडे आपको एक गोल्डन चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना परवरदिगार के साथ जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगरचे आपसे पूरा हफ्ता ठीक तरीके से इबादत नहीं हो सकी, या काम की मसरूफियत की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से आप उस तरह से टाइम नहीं दे सके, तो यह एक मौका है, एक चांस है कि आप अपनी गलतियों का अजाला करें और जो आपका ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो चुका है इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लें।

सी तो लिसनर्स, जैसा कि तहाँ जैसे कि हमेशा हम अपने शो का आगाज करते हैं एक खूबसूरत सी मोटिवेशनल से कोट के साथ, कोई ऐसी बात के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो, साथ ही साथ वो आपकी दिन को, मूड को और ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील करे, ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आए। सो आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ही कोट। आज का जो हमारा फर्स्ट कोट है, जैसा कि आज फ्राइडे है सो वो फ्राइडे के हवाले से है और इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ये खूबसूरत सा मीनिंगफुल सा कोट आप सभी से शेयर करती हूँ

So basically, our first quote says, Friday is the weekly reminder that no matter how heavy your week was, Allah is always here to lighten your burden if you're prostrate before Him. So, ye tha hamara aaj ka first meaningful sa quote. So basically, इस कोड का मतलब ये है कि फ्राइडे एक हफ्ते का रिमाइंडर होता है, ठीक है। जैसे कि आप पूरा हफ्ता चलता जा रहा है जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात गुजारी, लेकिन जब फ्राइडे आता है और आप वापस से उस मकसद की तरफ लौटते हैं जिस मकसद के लिए आप मैं हम सभी इस दुनिया में आए हैं, यानी कि प्रे इबादत। सो जैसे ही हम अपने गॉड की इबादत करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है। साथ ही साथ जो पूरे वीक की उलझने होती हैं, डिस्टर्बेंसेस होती है, वो सभी भी गायब हो जाती है। सो जी, ये था हमारा आज का फर्स्ट खूबसूरत सा कोट। अब ज़रा इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सो बेसिकली हम पूरा हफ्ता दुनिया की तगदो में लगे रहते हैं, कभी काम का स्ट्रेस तो कभी रिश्तेदारों की उलझन और कभी आजकल की टेंशन। सो इस तरह से हमारा दिमाग और हमारा दिल बिल्कुल थक सा जाता है। वी फील हैवी, हमें ऐसा फील होने लगता है कि बस जिंदगी तो इन टेंशनों और मुश्किलात का नाम है। लेकिन फ्राइडे आते ही जैसे ही हम इस चीज़ को याद करते हैं कि आया हम इस दुनिया में क्यों आए थे, हमारा आने का मकसद क्या है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब आप अपने सबसे ऊंचे मुकाम यानी उस टाइम पीरियड या उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां आपका जो कनेक्शन होता है वो गॉड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो आप फील करते हैं कि ये जो दुनिया की टेंशनें हैं या फिर जिन तमाम तर चीज़ों को बातों को आपने इस तरह से मुश्किल समझ लिया था वो उस तरह से मुश्किल नहीं है, रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप अपना और अपने गॉड का कनेक्शन बिल्ड करते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसे लगता है कि अगरचे काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें इबादत ना किए हुए या फिर वो सिराते मुस्तकीम से भटक चुके हैं। सो भटकने के बाद बहुत सारे लोग इसी सोच में रहते हैं कि अच्छा अब किस तरह से हम वापस आएं और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसी स्मूथ पैटर्न पर चलाएं। तो इस तरह से इस सोच में मुब्तला रहते रहते रहते इंसान अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देता है। बाज़ुकात इंसान लोग ये भी सोचते हैं कि क्या पता अगरचे मैं वापस आ जाता हूँ तो क्या मुझे फॉरगिवनेस मिलेगी, क्या मुझे दोबारा से एक नया मौका मिलेगा। तो ये वो सभी चीज़ें होती हैं, सभी थॉट्स होती हैं जो कि इंसान को डिस्टर्ब करती हैं, मूड को चेंज कर देती हैं और एक कन्फ्यूजन में मुब्तला कर देती हैं। लेकिन याद रखिए कि हमेशा से वापसी का दरवाज़ा, वापसी का रास्ता खुला रहता है। अगरचे आपसे हो गई हैं बहुत सारी नादानियाँ, लेकिन और नादानियों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास होता है या आपको ऐसे फील होता है कि आया आपने काफ़ी अरसे से कोई भी अच्छा काम नहीं किया और या आपने कोई गलत काम किया है और आपको ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो वही टाइम पीरियड होता है, वही मोमेंट होता है जहाँ से आपकी फॉरगिवनेस शुरू हो जाती है। सो गलती का एहसास होने के बाद इंसान को ज़रूर मौका मिलता है कि वो अपनी उस गलती को सुधार सके। तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि अगर समटाइम्स आपसे भी लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस मत लें और ये मत सोचें कि आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी मिल जाएगी। वापस आ जाएं सिराते मुस्तकीम की जानिब और कोशिश करें कि जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है उसे मज़ीद नए सिरे से बिल्डिंग अप करें।

सो लिसनर्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरे खूबसूरत से मीनिंगफुल से कोट की जानिब। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ चुका है, तो हम जरा कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इस डिस्कशन को स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हम उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जब बात मुकम्मल ना हो सके तो बाज़ात ऐसा होता है कि वो बात अधूरी रह जाती है और सुनने वालों के दिलो दिमाग पर वो उस तरह से असरअंदाज नहीं होती। अभी आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी ज़रूरी होती है शो के लिए। तब तक के लिए आप हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब के संग जुड़े रहें, और वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। तो लिसनर्स, अभी ब्रेक टाइम में स्क्रीन पर देखते देखते एकदम से मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी पोस्ट की जानिब जिसका मीनिंग ना सिर्फ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ था, बल्कि अगर जब मैंने इस पर गौर की तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग था। आई होप सो कि जब आप इसको सुनोगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है और ये आपके दिल पर काफ़ी गहरे नक्श छोड़ कर जाएगा।

बेसिकली इस पोस्ट की वीडियो के ऊपर येलो टेक्स्ट में एक ऐसी बात लिखी हुई थी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सो वहाँ कुछ ये लिखा हुआ था कि इफ ओशन वाटर वॉज स्वीट पीपल वुड हैव फिल्ड इट इनटू बॉटल्स एज वेल। इट्स सॉल्टनेस इज इट्स फ्रीडम एंड दिस इज नॉट अबाउट वाटर। सी तो लिसनर्स, सुना आपने, अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो लोग उसे भी बोतलों में भर लेते। इसका खारापन ही इसकी आज़ादी है और ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं है। यानी कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जस्ट थिंक अबाउट इट, ये बात दरअसल हमारी बाउंड्रीज के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एक के लिए बहुत मीठा, बहुत अवेलेबल और हर वक्त रेडी रहना चाहिए, बट द ट्रूथ इज अगर आप हर किसी के लिए बिल्कुल स्वीट अवेलेबल बन जाएंगे तो लोग आपको बॉटल में बंद कर लेंगे, मीनिंग दे विल कैप्चर यू।

limit you and use you according to their own needs. So, आपकी थोड़ी सी saltness यानी आपकी boundaries आपको ना कहना, आपको खुद पर compromise ना करना ही आपको आजाद रखता है. लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती. इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने इस बात को एक और ही लेवल पर एलेबोरेट किया. सो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है जो सुनकर आपको भी काफ़ी हद तक सुकून महसूस होगा और आपका एक नया पर्सपेक्टिव सामने आएगा. सो ये ज़रा इस यूज़र के कमेंट को भी डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन उससे पहले शो में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम. अच्छा, ये कलाम हमारे एक यूज़र की फरमाइश पर शो में शामिल किया जा रहा है. तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम. कलाम के उस पर होती है आप सभी से मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं.

सी द लिसनर्स, हमारे उन इस पोस्ट के रिलेटेड अभी मैं बात कर रही थी, और ये के कहानी में एक नया ट्विस्ट ये है कि जो हमारी पोस्ट थी उसके कमेंट सेक्शन के अंदर एक शख्स ने अपने कुछ आइडियाज़ का इजहार किया जो कि हमारे पर्सपेक्टिव को टोटली चेंज कर देती है। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आइए ज़रा वो भी आप सभी से शेयर करती हूँ।

अच्छे तो लिसनर्स इस खूबसूरत सी बात का मतलब समझ रहे हैं आप। समुंदर ने अपना खारापन बचाकर अपनी वास्टनेस यानी अपनी अजमत और गहराई को महफूज रखा। दूसरी तरफ नदियां जिन्होंने अपना मीठा पानी बांटकर जमीन को जिंदगी की एक नई कायनात बख्शी। सो दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। समुंदर हमें सिखाता है कि खुद को कैसे बचा के रखा जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ रिमेनिंग ट्रूथ टू योरसेल्फ। और साथ ही साथ नदियां हमें सिखाती हैं कि बांटने में कितनी खूबसूरती है। द ब्यूटी ऑफ गिविंग। सॉरी लिसनर्स, हमें अपनी जिंदगी में इन दोनों के बीच एक बैलेंस चाहिए होता है। हमें कभी समुद्र की तरह खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि कोई हमें कंट्रोल ना कर सके, और कभी नदियों की तरह दिल खोलकर अपना प्यार और अपना वक्त बांटना पड़ता है। तो मेरे सभी प्यारे लिसनर्स, आज की ये खूबसूरत सी डिफरेंट सी कहानी आपको कैसी लगी और इस कोट से आपने क्या मीनिंग अहज किया है, मुझसे लाजमी शेयर करें। 01157100971 इस नंबर पर जाकर अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें, और साथ ही साथ ये बताइए कि आया आप समुंदर की तरह बनना चाहते हैं या फिर नदियों की तरह। लेकिन दोनों में से अगर आप दोनों चीज़ों का बैलेंस करेंगे तभी ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी, मीनिंगफुल बनेगी और आप जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकेंगे। तो जी लिसनर्स, ये थे हमारे आज के दो खूबसूरत से मीनिंगफुल से कोट जो कि मैंने आप सभी से शेयर किए। वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कोट अच्छे लगे होंगे। साथ ही साथ फिर से शामिल करते हैं शो में एक खूबसूरत सा कलाम, कलाम वो जो कि हमारे एक लिसनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीवा डायलॉग किस गाड़ी में, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सभी लिसनर्स का ख्याल रखें और उनकी पसंदीदा फरमाइश को शो में शामिल करें। तो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। आप सभी से मुलाकात होगी कलाम के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

लिसनर्स, अब वक्त आ गया है शो में, शो के अगले सेगमेंट की थाने बैठने का, जो कि है हमारा, मेरा, बल्कि आप सभी का, हम सबका फेवरेट, द स्पाइस किचन। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के हवाले से। और जैसा कि है आज जुमातुल मुबारक, और जुमे को समझा जाता है हमेशा से एक ऑफिशियल चावल डे, और जितने भी एशियन फैमिलीज़ हैं, एशियन कम्युनिटीज़ हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि फ्राइडे को सभी घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, और खाने में मोस्टली या तो बिरयानी होती है या फिर होता है पुलाव। सो डिफरेंट तरह की बिरयानी की रेसिपीज़ तो मैं हमेशा आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसके साथ साथ एग फ्राइड राइस की भी रेसिपी मैंने आप सभी से शेयर की, और बॉयल राइस की भी। सो आज हम बनाते हैं एक पुलाव, लेकिन जरा डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट फ्यूजन में, डिफरेंट मसालों के साथ। तो जी माय लवली डिवास और सभी हमारे मेल हजरात लिसनर्स, जल्दी से अपनी डायरी, नोटबुक, कॉपी या फिर पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी जो कि खाने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। सो इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी से शेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। समटाइम्स कभी कभी दिल नहीं करता कमर्शियल ब्रेक पर जाने का, लेकिन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है मुझे आप तक पहुंचाने के लिए, मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। सो इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहिए, और 01157100971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। सो जब तक ये ब्रेक का सिलसिला जारी रहता है, तब तक मैं आप सभी के मैसेजेस वगैरह पढ़ लेती हूँ, और फिर ब्रेक के बाद हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद आप सभी को सुनने वाली तमाम तर्स माहतों को टीवा डायलॉग में वेलकम। तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम फाइनली इस शो के लास्ट चंक में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब बस कुछ ही देर रह गई है आपको और मुझे साथ साथ। सो जी, ब्रेक से पहले जैसा कि हम रेसिपी की बात कर रहे थे, तो आइए अब जरा शेयर करती हूँ आपसे आज की मजेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो इस रेसिपी को जैसा कि हम बना रहे हैं मजेदार सा मैजिकल सा पुलाव, जो कि है वेजिटेबल, टोटली उन सभी लिसनर्स के लिए जो कि वेजिटेरियन हैं और उनको चाहिए होते हैं कि वेजिटेरियन में भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हों और डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हों। सो ये वही सिंपल सी बेसिक सी रेसिपीज हैं जो आप सभी को मालूम हैं, लेकिन मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि उनको डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट मेथड्स में बनाऊँ ताकि एक डिफरेंट तरह का अरोमा मिले, टेस्ट मिले और आपके टेस्ट बड्स थोड़े से चेंज हों। सो जी लिसनर्स, इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए बासमती चावल 2 कप्स। अब जरा बात करते हैं उन सभी वेजीज की जो कि हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप कैरेट, बिल्कुल स्लाइस्ड कट हुई हुई, साथ ही साथ 1 कप ग्रीन बीन्स और 1 कप कॉलीफ्लावर, और हमारी अगली वेजिटेबल है 2 मीडियम पोटैटोस, ठीक है, जो इन्हें क्यूब्स में हम कट करके रख लेंगे। इन सभी वेजीज को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद इनको बहुत अच्छे से सलीके से कट कर लें, क्योंकि रेसिपी के अंदर ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं क्या वो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, टेस्ट अच्छा है या नहीं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि कोई रेसिपी होती है या फिर कुछ भी, वो खाने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूँकि वो दिखने में उस तरह से अच्छा नहीं दिख रहा होता तो हमारा खाने को दिल नहीं करता। सो सबसे ज़्यादा मेक श्योर किया करें कि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो। अब ज़रा बाकी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, साथ ही साथ हमें चाहिए पंच पोरू 1.5 टीस्पून। दिस इज द सीक्रेट फ्यूजन एलिमेंट जो कि एक बंगाली 5 स्पाइस मिक्स है। तेज पत्ता 2 अदद, सेमन स्टिक 1 इंच, उसके बाद है कार्डिवम छोटी इलायची 3 से 4 अदद, ठीक है, लौंग 4 अदद, ठीक है। अब आगे चलते हैं अनियंस 2 मीडियम साइज के, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून यानी 1 फुल एंड 1.5 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज 3 to 4, टोमेटोज 1 मीडियम चॉप्ड। और अब ज़रा स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। सो सॉल्ट हमेशा की तरह हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, बिरयानी मसाला पाउडर 1 टीस्पून फॉर द पाकिस्तानी एंड इंडियन टच, और शुगर चीनी जस्ट अ पिंच टू बैलेंस द फ्लेवर। और इस रेसिपी को रॉयल फिनिश देने के लिए, यानी कि जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि एक डिफरेंट तरह का टेस्ट अरोमा बनाने के लिए हम रेसिपी को किस तरह से रिच बना सकते हैं, सो हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, फ्राइड अनियंस और काजू जो कि हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। सो सबसे पहले आप चेक कर लें क्या आया ये सब इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हैं या नहीं। आई नो हर 10 में से 8 इंग्रेडिएंट्स तो घर में मौजूद होते हैं, पीछे जो बच जाती हैं 2 से 3 अदद चीज़ें। सो ये बहुत ही सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे, आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। सो मैंने कोशिश की है कि जैसे कि ये एक एशियन रेसिपी है तो हम इसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली तीनों तरह के मसाले ऐड फ्यूजन करें, क्योंकि
तो हमारी हर तरह की कम्युनिटी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे। ऑलराइट, अब आते हैं असली यानी कि कुकिंग की जानिब। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। सबसे पहले आप एक बड़े बर्तन को ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून घी या फिर कुकिंग ऑयल। साथ ही साथ आपने बड़े साइज में कट करके आलू रख देने हैं, जिन पर नमक और हल्दी लगाकर इन्हें हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब आलू पर एक प्यारी सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाए तो इन्हें निकाल कर एक साइड पर रख दें। ट्रस्ट मी, ये आलू पुलाव का मजा डबल कर देंगे। अब आपने करना है उसी बचे हुए घी में बाकी बचा हुआ मजीद ऑयल ऐड कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और हमारा फ्यूजनल हीरो पंच फूरो। जैसे ही ये क्रैकल करने लगे और इनकी खुशबू पूरे घर में महकने लगे, अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं स्लाइस्ड अनियंस और साथ ही साथ आपने अनियंस को तब तक पकाना है कि जब तक प्याज बिल्कुल सुनहरा हो जाए। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही हमारा प्याज हो जाएगा ब्राउन सुनहरा, याद रखिएगा बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चावलों का रंग है वो भी गहरा हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही साथ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इन्हें मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब बारी आती है टमाटर और बिरयानी मसाला दोनों शामिल करने की। सो अब हम टमाटर और बिरयानी पाउडर ऐड कर देंगे और तब तक इन्हें पकाएंगे कि जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाएं। सो जैसे ही हमारे टमाटर हल्के से बिल्कुल नरम हो जाएं, सो इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे अपनी सारी की सारी वेजीज, जिनमें गाजर, मटर, गोभी, ये तो 3 मैंने ली हैं, लेकिन आपको अगर इसके अलावा कोई भी वेजीज पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और जो मौसमी सब्जी आपको बआसानी दस्तयाब हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन्हें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लें ताकि मसालों का स्वाद सब्जियों के अंदर तक चला जाए। अब इस भिगोए हुए बासमती राइस इसमें शामिल कर दें। ध्यान रहे चावल टूटने नहीं चाहिए, हल्के हाथ से चावलों को और सब्जियों को आपस में मिक्स कर लें। अब इसमें 3 से 5 कप पानी ऐड कर दें, ठीक है, याद रखिएगा कि हमने 2 कप चावल लिए हैं तो इससे थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, ठीक है। सो 2 कप राइस लिया तो डबल से थोड़ा सा कम यानी कि 3.5। सो आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी कभी भी चावल बनाएं या फिर कोई भी पुलाव बनाएं किसी भी किस्म का, सो आप जितने चावल यूज़ करें उसकी जो डबल क्वांटिटी होती है उससे थोड़ा सा कम पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि आपको बैलेंस रहेगा और आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा किस तरह से आप अपनी इस रेसिपी को बैलेंस कर सकते हैं और फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चावल ओवरकुक हो जाएं या फिर रेसिपी उस तरह से ना बने जिस तरह से आपने इमेजिन किया था।

साथ ही साथ हम इसमें नमक और पिंच ऑफ शुगर ऐड कर देंगे और शामिल करेंगे जो फ्लेवर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं।

जब उबाल आने लगे, जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे और चावल का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए, सो अब आते हैं सबसे सब्र आजमा और बेहतरीन हिस्से पे, यानी कि दम की जानिब, क्योंकि दम ही होता है असल चावलों की पहचान और चावल बनाने का बेस्ट मेथड। सो चावल पर थोड़ा सा फ्राइड अनियन, साथ ही साथ काजू और क्यूरा वाटर हम छिड़क देंगे और अब अपने इस बर्तन को टाइटली ढक देंगे और बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है, और 10 से 15 मिनट के बाद चावल ऑटोमेटिकली अपनी दम की वजह से, हीट की वजह से कुक हो जाएंगे। सब्र करें क्योंकि इस सब्र का फल बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। टाडा, 15 मिनट के बाद जब आप लिट उठाएंगे तो जो खुशबू पूरे घर में घूम रही होगी उनसे पता चल जाएगा कि आपके घर में आज बहुत ही खास रेसिपी बनी है। एक एक दाना खिला हुआ आलू बिल्कुल नरम स्वादिष्ट और सब्जियां खूबसूरत हसीन रंगों में, इसे चाहें तो आप ठंडे रायते के साथ या फिर सलाद के साथ या फिर बंगाली स्टाइल में भी खा सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस, पाकिस्तानी हो या इंडियन या हो बंगाली, हर कोई इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ये लाजमी कहेगा कि वाओ, इट्स रियली अमेजिंग प्लस डिलिशियस। तो लिसनर्स, जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लिसनर्स, इसी के साथ ही शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब गुफ्तगू होती है इतनी खूबसूरत बाअसर तो इंसान बातें करता चला जाता है और वक्त का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। कुछ इसी तरह से है आपका और मेरा ये सफ़र और इसी के साथ ही टीवार डायलॉग का ये सफ़र भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो जी लिसनर्स, जाते जाते बस मैं इतना कहूँगी कि शो भी ख़त्म हो रहा है लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह और आपकी जिंदगी अभी बाकी है। तो डियर लिसनर्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी इस जिंदगी को मजीद खूबसूरत बेहतरीन बना सकते हैं।

सोचिए लिसनर्स, कोशिश क्या करें कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अनमोल है, और ज़िंदगी वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को एक ही मर्तबा मुयस्सर होती है। सो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आज मैंने क्या किया, कल को मैंने ज़ाया कर दिया, आने वाले कल में क्या होगा, और फिर तरह तरह की टेंशनें, सक्सेस की टेंशन, साथ ही साथ वर्कलोड की टेंशन, ज़्यादा काम मिल जाने की टेंशन और जॉब ना मिलने की टेंशन, ये टेंशन तो फिर जिंदगी का हिस्सा है, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। इन टेंशन के बिना जिंदगी अधूरी है। सो द लिसनर्स, आपको आदत डालनी पड़ेगी कि इन्ही टेंशन्स के साथ, इन्ही मसले मसाइल के साथ आपने ज़िंदगी को जीना है, ना सिर्फ जीना है बल्कि भरपूर तरीके से। सो ओवर थिंकिंग छोड़ दें, फालतू का स्ट्रेस लेना छोड़ दें और ज़िंदगी को जिए। वो कहा जाता है ना कि हल पर ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। सो वैसे मेरा माइंड में आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए। सो डियर लिसनर्स, इसके साथ ही अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आप सभी से मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, नए गुफ्तगू के साथ और नए जोश और वलवले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और ना सिर्फ अपना ख्याल रखिए बल्कि उन सभी लोगों का ख्याल रखें जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि होता है ना कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारी किसी भी छोटी सी बात से हर्ट हो जाएं, यू हैव नो आइडिया। सो कोशिश किया करें कि अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें और ज़िंदगी को बेहतरीन और खूबसूरत बनाएं। तो दिल इसने जाते जाते ये खूबसूरत सा कलाम आप सभी के लिए प्ले कर देती हूँ, और इस खूबसूरत से कलाम को सुनिए और सुनते हुए मुझे अलविदा करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology.

0: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवान एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बुक लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलू राज की। सवाल उसी के साथ साथ बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा है दिन। और दिन भी बड़ा खूबसूरत है, जुमे का दिन है और माशाल्लाह से इसको हम अच्छे से नहीं बिना ना गुजार पाते तो अच्छे से ही गुजरता है। मतलब जुमे का दिन एक ऐसा दिन है जो आप चाह कर बिना ये नहीं कह सकते कि यार ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन बुरा गुजरा है मेरा। खैर, जुमा मुबारक का दिन है, दुआ करेंगे सब के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले हमारे हक में भी वो कबूल होती है। ये वो ख़ास दिन होता है अगर पूरे हफ्ते में हम लोग अपने काम काज में बिज़ी होते हैं, उस तरह से ऊपर वाले को टाइम नहीं दे पाते। सो ये वो ख़ास दिन होता है जुमे का दिन, जिस दिन हम अपने रब से ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हैं, जिस दिन हम अपने रब से ज़्यादा गपशप कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग जो है वो क्लोज़ ही हैं, लेकिन एक ख़ास दिन जो है जुमे का ये बनाया जाता है और जुमे में जो है जुमे की नमाज़ अदा की जाती है, फिर उसके बाद ढेरों दुआएँ भी की जाती हैं अपनों के लिए, दूसरों के लिए, अपने प्यारों के लिए। हर प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक हो ठीक 2 बजे तक, और साथ ही में जो है वो प्रोग्राम में शामिल होकर आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी तरह की प्रोग्राम की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं radiofaza 97.1 FM के नाम से, और आप फिर हमें सुन सकते हैं। बेशर्त यह कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में आप होंगे, आपने बस हमें सुन लेना है, बस आपके पास अपना इंटरनेट होना चाहिए। मांगी हुई चीज़ का मज़ा तो आता है, लेकिन फिर इंटरनेट मांगते हो थोड़ी सी शर्म भी आती है। प्रोग्राम का मकसद होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं, लेकिन आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम में कोई टॉपिक शामिल करवाना चाहें सो आप लाजमी करवाइएगा, या फिर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, कोई नसीहत किसी को देना चाहें जो आप नहीं दे पाते। अक्सर बाज़ूकात हम डर जाते हैं लोगों से, और डरते नहीं हैं, इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करने वाले जो हैं, जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं उनके सामने हम इतना बोल भी नहीं पाते। सो अगर किसी को कोई नसीहत करना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उनका नाम लेकर जो प्रोग्राम में वो मैसेज शामिल कर दूँगी। प्रोग्राम में शामिल होकर कोई कलाम प्ले करवाना चाहें सो वो भी करवा सकते हैं, दिन है जुमे का सो इस टाइम पर जो है वो कलाम ही प्ले किए जाते हैं मेरे पास। अब हर फ्राइडे को मेरे पास अक्सर जो है ना वो फरमाइश आती ही आती है कि ये वाला ट्रैक जो है ना प्रोग्राम के शुरू में प्ले करना है, तो मैं वो कर नहीं पाती, मेरे पास जो है वो फरमाइश तो आती है लेकिन वो वही बात आ गई ना कि दिन जुमे का होता है और जुमे के दिन जो है वो सूफी कलाम जो है प्ले किए जाते हैं। कोई एक दिन तो रखा जाए ना यार कि सूफी ट्रैक भी सुने जाए, कोई कलाम आप सुनना चाहें तो मैं वो ज़रूर प्ले करूँगी। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। ड्राइव करते हुए कोई कलाम प्ले करवाना चाहें सो मैं लाजमी करूँगी। और जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, आई मीन के खवातीन जो मुझे घर बैठे सुन रही हैं, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही हैं। खवातीन का वही काम है कि भाई खाने बनाना, खाने की तैयारी करना, खाने में क्या बनाना है, क्या होना चाहिए, वही सीन होता है। और खैर, कोई रेसिपी पूछना चाहे मेरे तरीके से बनाने का, कोई तरीका आपको मतलब चाहिए, अगर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ सो मैं आपको

मैं बता दूंगी। अगर कोई रेसिपी आप बताना चाहते हैं कि ये वाली रेसिपी प्रोग्राम में शामिल कर दें तो मैं उसको भी ज़रूर शामिल कर दूंगी। मिलकर ओपन करते हैं हम इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझसे शेयर करनी होती है, जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती हैं। और सबसे मज़े की बात जो है ना, जुमे के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम ही प्ले करते हैं। मतलब गपशप उस तरह से होती है हमारी, लेकिन मतलब उस तरह से नहीं होगी, ज़्यादा हम कलाम ही प्ले करते हैं क्योंकि टाइम भी कुछ इस तरह का होता है, जुमे का टाइम होता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी आवाज़ भी आपको सुनाऊं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जुमे के टाइम पे कलाम प्ले करूं। और मज़े की बात, जुमे के दिन जो है ना वो अक्सर घर में आना जाना लगा रहता है मेहमानों का। तो बताइएगा कि कौन आ रहा है घर। मतलब हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब हम लोगों ने जुमे के दिन नानी के घर जाना, और फिर उसके बाद फिर कहीं जाने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन खैर वही बात आ गई कि जुमे के दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, और इसी चक्कर में जो है ना वो इंसान मज़े भी करता रहता है। लेकिन खवातीन के कैसे मज़े यार, खाना तो हमें ही बनाना पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई मोमिन के घर मेहमान आए ना तो मोमिन को खुशी होती है। असल मोमिन वो है जिसके घर मेहमान आए तो वो खुश हो। तो पीछे से एकदम से बीवी की आवाज़ आई, मोमिन खुश होता है लेकिन मोमिना को मसला है, मोमिना ने खाना बनाना होता है यार। या तो है ना कि आप बराबर का काम करवाएं, थोड़ी हेल्प भी करवा दें। हेल्प करवाना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, मर्दों को खाना नहीं बनाना चाहिए, मर्दों को ये नहीं। आजकल दुनिया बड़ी फेमस हो गई है भाई, दुनिया एक अलग ही दायरे में आ गया, और हर इंसान को अपने काम करने आने चाहिए, जाहिर सी बात है। और हम लोग जो हैं वो मतलब लड़के जो हैं, मर्द हजरात के बाकी जो है, जब हम पाकिस्तान से जो है आउट ऑफ कंट्री में आते हैं तो यहाँ पर आकर जो है ना, फिर हमें अपने काम काज खुद ही करने पड़ते हैं, और फिर हमें आदत भी पड़ जाती है। फिर कुछ लोग जो है ना, यहाँ से जब वापस जाते हैं ना पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर जाके हर हरामियाँ दिखानी है कि यार मैं तो वहाँ कोई ऐसा काम करता ही नहीं था। भाई जो लोग बढ़ जाते हैं उनको वहाँ पर जाके अपने काम काज खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर मेड रख लेते हैं तो ये भी गलत बात है। लेकिन मोस्टली जो है ना, यहाँ पर आके जो है ना आपको काम खुद ही करने पड़ते हैं, और फिर जो है वो आपको पता ही है। हर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत से कलाम के साथ। उम्मीद करते हैं आपको कलाम पसंद आएगा। मुझे बताइए कि अपनी फरमाइश का कोई कलाम प्ले करवाना चाहें तो मैं वो भी ज़रूर कर दूँगी। हमेशा की तरह मैं कोशिश यही करती हूँ कि पहला कलाम जो है वो यही प्ले करूँ, बिस्मिल्लाह। कोक स्टूडियो में शामिल करती हूँ सीज़न 3, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस खूबसूरत से कलाम के साथ करती हूँ ना, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो और अच्छे से गुजरता है। खैर आइए सुनते हैं इस कलाम को। इस कलाम के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस प्यारे से कलाम के उस पार।

जी हाँ, तो वन से अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोराज की। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, प्रोग्राम का आगाज़ किया था उस ट्रैक के साथ, इस कलाम के साथ सॉरी। और उसी के साथ साथ एक और छोटी सी फरमाइश आन पहुंची है, तो मेरा दिल है उसको भी पूरा कर देते हैं। सवाल आइए सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के उस बारे की आपसे मुलाकात। सुबह तक के लिए कहीं नहीं जाना, जो रहना है फसल के साथ विद सलोराज।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं आप तमाम समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम की जानिब से कि लाइव स्टूडियो से भी वही आवलसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है कलाम शामिल किया था, कलाम की फरमाइश थी। मैंने सोचा कि उन्हें अपनी आवाज़ को भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए ताकि आप ये ना समझेंगे सलराज पता नहीं कहाँ चली गई हैं। खैर, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ साथ हैं। अभी जो है प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ब्रेक से पहले जो है ना एक और छोटा सा कलाम शामिल करते हैं। यू नो कि आज जो आज का दिन जुमे का दिन है और जुमे के दिन मेरे पास फरमाइश भी बहुत सी आती है। मेरी कोशिश फिर वही होती है कि मैं उनको भी पूरा करूँ, साथ साथ आपको अपनी आवाज़ भी सुनाती रहूँ। अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हासिल होगी इस कलाम के बाद, फिर उसके उस पर आपसे रहेगी मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 एफएम एंड टैप। मिलते हैं इस कलाम और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पर।

आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं बिल्कुल मेरी बस के साथ साथ प्रोग्राम में जो है मेरा आपका साथ रहेगा। ठीक है, ठीक 2 बजे तक अभी जो है मैंने प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था और मुझे कहा भी गया कि यार अब अपने प्रोग्राम में जो है ना वो ज़्यादातर आपदा प्रवीण की आवाज़ को शामिल करती है। सो वेल शामिल नहीं करती, मेरे पास फरमाइश आती है और वैसे भी मुझे आपदा प्रवीण की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लगता इनकी आवाज़ को शामिल करके प्रोग्राम में। हर प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, या फिर कोई कलाम आप प्ले करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर कोई अच्छी सी नसीहत मेरे ही नाम करवाना चाहें तो वो भी बता दीजिएगा, या फिर उनके नाम जिनको आप जो है फेस टू फेस जिनसे बात नहीं कर सकते या आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है उनसे बात करने की, तो आप उनका नाम और पैगाम जो है ना मुझ तक पहुँचा दीजिए, मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर दूँगी। पर जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बी सेफ बी केयरफुल, और जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समाचारों का। रेडियो वजह को ट्यून करने का प्लस चूज करने का प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान सा है 01157100971। इस खूबसूरत से नंबरों कीजिएगा सेफ, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे गूगल पर भी सुन सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो सवल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सो वो आपको मिल जाएगी। साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। और उसी के साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, कलाम के उस पार रही आपसे मुलाकात। और अभी के लिए प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आया होने वाली है और इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार रही आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड दैट। मिलते हैं छोटी सी चुनमुन सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ

वेल जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। तो जी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक इस पर रही आपसे मुलाकात। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है वो वक्त हुआ जाता है, मतलब हमारे स्टूडियो की डाल मशीन पे वक्त हुआ जाता है अगले सेगमेंट का। मैं लास्ट सेगमेंट हमारा हमेशा ये रखती हूँ कि म्यूज़िक प्ले किया जाए, मीन्स कि आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। पर अभी जो है वो मेरे पास बड़े खूबसूरत से मैसेज भी रिसीव हुए हैं, बट मेरे मैसेजेस जो है ना पर्सनल नंबर पे आ रहे हैं। बट आप मुझे ऐसा कर दें कि पर्सनल नंबर पे मैसेज करने से बेहतर है आप हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ना कि सिर्फ मैसेज ही नहीं, बल्कि आप हमारे साथ लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को हम वापसी भी आकर शुरू करेंगे। अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक और छोटा सा कलाम प्ले करे जाते हैं आपके अपने दरमियान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलाम पसंद आएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अरे प्रोग्राम में कोई कलाम प्ले और आपको पसंद ना आए। सो लाइए सुनते हैं इस कलाम को। इस कलाम के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। एक बार फिर से कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ। विद सलूराज।

साथ वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। वह आज हम काफ़ी ज़्यादा ही बोलना शुरू कर दिया और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि तकरीर फिर से स्टार्ट करने लगी है। नहीं नहीं, तकरीर हम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे, और खैर आप माँ कहते हैं तो फिर नहीं करते। वह अभी प्रोग्राम में जाना एक ट्रैक शामिल करते हैं, कलाम शामिल करेंगे, और कलाम हम चुन कर लाए हैं बड़े खूबसूरत सा कोक स्टूडियो सीज़न 14 शामिल किया आपके अपने दरमियान आबदा परवीन और नसीबो लाल की आवाज़ में। नसीबो लाल सिर्फ गाने ही नहीं गाती, वो कलाम भी गाती हैं। ओहो ओके ओके, आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको नसीबो लाल की आवाज़ सुननी है तो आप रेडियो फिजा को ट्यून कर लें, वहाँ पर आपको बहुत ही आवाज़ें मिलेंगी सुनने को। सो अभी तक के लिए इस कलाम के उस पर आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। सब उसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम में मेरा आपका साथ काफ़ी कम रह चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना बीच में आके आपको अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए, ताकि आप ये ना समझें कि सलूराज पता नहीं कहाँ चली गई। सब उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो मैंने कलाम भी प्ले किए, साथ साथ कुछ मैसेजेस भी मैंने शामिल किया। अभी मेरे पास एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज रिसीव हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैसेज में है, जी कैसी हैं आप? शो बहुत मज़े का जा रहा है और आपकी आवाज़ सुन के तो थकन भी उतर जाती है। अरे थैंक यू थैंक यू। बट ये मैसेज लड़की का, लड़की ने किया, किसी लड़के ने नहीं किया, इस बात को सुन लीजिए। सना हमें सुन रही हैं मेरे ख्याल से। इनका मैसेज अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। सना हमें पता नहीं कहाँ से सुन रही है, इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था, इस पर इन्होंने मुझे अपनी जगह का नाम नहीं बताया। बट शुक्रिया सना, आपने हमारी तारीफ़ की और आपने हमारी आवाज़ को सुना, और इसी के साथ साथ हम भी आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। सना ने बड़ी ही प्यारी बात प्रोग्राम में शामिल करवाई है और कहा भी, मेरे ख्याल में इस टॉपिक को, इस बात को मैं पहले भी प्रोग्राम में शामिल कर चुकी हूँ, और कि कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ लोग खामोशी से अपने हो जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये अपनों में तो ये लाइन आती नहीं है, ये तो दूसरों को लेके आता है। मतलब मैंने कभी भी मुश्किल टाइम में जो है ना अपनों को साथ खड़ा हुआ नहीं देखा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अपने कैसे होते हैं। बट हाँ, ये बात तो है कि अपने जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है ना डंडी मार जाते हैं, लेकिन जो गैर है ना, जो पराए लोग हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। और इंसान जो है ना वो दूसरे इंसान पर यकीन करता है, यानी कि पराए लोगों पर ही यकीन कर लेता है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको धोखा भी दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बड़े समझने की बातें हैं, समझने वाला हर कोई नहीं होता। अगर ज़िंदगी में समझाने वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको समझाने वाले कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर अच्छे बुरे की बात बताता है, सो वो उसको संभाल के रखें, क्योंकि इस दुनिया में, इस टाइम में जो है ना, आजकल के दौर में जो है ना, वो अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। और अगर आपके पास हैं तो प्रोटेक्ट करें उन्हें, उन्हें संभाल के रखें। वो कहते हैं ना, फिर अगर नसीब में हुआ तो हाथ से जाकर दोबारा वापस आ जाएगा। बट ये भी कहा जाता है कि नसीब जो है वो खुद बनाने पड़ते हैं, दुआओं के ज़रिए बदलते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुआ का, मांगने का ज़रिया दिया होगा कि हम उससे जब दिल चाहे जो भी दुआ मांग सकते हैं। एक वही दरा जहाँ पर बार बार जाने से शर्मिंदा नहीं किया जाता, एक वही दरा जहाँ पर आप बिला झिझक हर बात कर सकते हैं, जो ये जिसके साथ ये बात शेयर करने के बाद आपको ये डर नहीं रहता, ये फिक्र नहीं रहती कि ये बात मेरी लीक हो जाएगी, ये मेरी बात इधर से उधर चली जाएगी। सो एक वही दर है जहाँ से मांगने में शर्म नहीं आती, बल्कि सालों बाद भी वहाँ पर जाओ तो वो आपको यही कहेगा कि हाँ आ जा आ जा। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, ऐसे है तो वैसा है, नहीं। सो वेल, अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक खूबसूरती आवाज़ को शामिल कर देते हैं। और मुझे पता नहीं कि इसको क्या कहा जाएगा, नात ही मेरे ख्याल में होगी ये। सो वेल, आइए सुनते हैं इसको, इसको इस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून फजा 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। कल उसी के साथ साथ ब्याह में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, नात शरीफ शामिल की थी, और साथ ही में अब वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। वीकेंड के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। वीकेंड पे कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे मुझे लाजमी बताइएगा, और मैं कहीं भी गई ना तो आपको मस्त बता दूंगी। लेकिन उससे पहले जो है आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। सो कल तक के लिए नहीं, परसों तक के लिए ही मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। अगर तुम

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप
2: It's commercial time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932.
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का.
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
12: You are listening 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा. इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

ये शान और शौकत, ये तख्त और ताज सब धरा रह जाएगा जब मौत का फरिश्ता तुझे लेने आएगा। न कोई साथी

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।

0: You're listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
13: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
14: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदे, जी आयन सद बिस्मिल्लाह पखैर राग ले असल वेस्ता। उम्मीद वासी खेती जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा। मेजबान उस्मान खान हमेशा की तरह आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी हैं आज के प्रोग्राम में मेरे साथ साथ। जिन लोगों ने आज पहली बार फजा 97.1 एफएम को ट्यून किया या फिर फजा डैप पर मेरा साथ दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे आपने सिर्फ खामोश तबीयत की तरह मेरा साथ नहीं देना बल्कि प्रोग्राम में शामिल होना है और अपने होने का एहसास मुझे दिलाना है। उसके लिए तरीकेकार बहुत ही आसान सा है। करना कुछ यूं है कि आपको मैं एक जो नंबर बताता हूं उस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा और फिर व्हाट्सएप पर जाइएगा। व्हाट्सएप पर जाने के बाद अपना प्यारा सा नाम, अपने इलाके का नाम, उसके बाद खूबसूरत सा पैगाम, कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या किसी चाहने वाले के नाम कोई खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा 01157100971 पर। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुनना चाहें तो radiofaza.co.uk सर्च कर लीजिएगा गूगल पर और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फजा डैप ट्यून कर सकते हैं आप। प्रोग्राम की शुरुआत में खूबसूरत सा ट्रैक, एक रोमांटिक सा ट्रैक, उन तमाम तर खूबसूरत से कपल्स के नाम जो इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं। नॉटिंघम में हैं या इसके गिर्दोनवा में, जहां जहां भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिए ही ये खूबसूरत सा ट्रैक है। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। सो इस आगाज के बाद लौट कर चबाएंगे वापिस घर, फिर मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे। बस आपने मेरे साथ साथ रहना है और अपने होने का एहसास लम्हा ब लम्हा मुझे दिलाते रहना है। I'm your host Usman Khan and you're listening for the 97.1 FM and also DAB.

All right, जनाब, उम्मीद है कि आप ये खूबसूरत सा अब प्यारा सा मैचअप जरूर एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा कि अब थोड़े से बीच में दखल अंदाजी करनी चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि आपका मेजबान उस्मान खान जो आपके साथ है वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला और आपकी मर्जी के ट्रैक को भी जरूर शामिल किया जाएगा। नंबर वही है 01157100971 पे आप व्हाट्सएप पे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, चाहें तो कॉल कर लीजिएगा। आज का प्रोग्राम जो है बड़े रोमांटिक से म्यूजिक के साथ चलने वाला है, तो बस कोशिश करिएगा कि किसी न किसी रोमांटिक सॉन्ग की ही फरमाइश करें। फिलहाल ये खूबसूरत सा एंजॉय कीजिएगा मैशअप, इसके उस पार करेंगे आपसे फिर से मुलाकात। रहिएगा मेरे साथ साथ, हम यो होस्ट उस्मान खान। छोटी सी चुनमुन सिंह मशहूर ब्रेक आएगी, इसके बाद उस मशहूर ब्रेक के उस पार जब लोड कराएंगे तो फिर मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपके मैसेजेस को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बस मेरे साथ रहिएगा और अपने होने का एहसास मुझे लम्हा बलम्हा दिलाते रहिएगा। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड DAB, आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

वंस अगेन वेलकम बैक जनाब, आ चुके हैं लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फॉर द नाइट 7.01 एफएम एंड टैब प्रोग्राम कॉल ड्राइव टाइम। और बंदा ने चीज़ उस्मान खान आपके साथ रहेंगे अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक, और इन 2 घंटों को हम मजीद खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका साथ मेरे साथ हो, और उसके लिए आपने 0115710971 पे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज या कॉल करके बताना है कि आप मेरे साथ साथ हैं। और इसके अलावा अगर आप तक हमारी ट्रांसमिशन रेडियो की ठीक से नहीं पहुँच पा रही तो आप हमारा साथ दे सकते हैं।

वेलकम बैक आ चुके हैं लौट के बाद भी इस एक बड़े खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया। इस ट्रैक के उस पार मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान और जस्मीन सैंडलेस की आवाज आप सुन रहे हैं। बड़े कम अरसे में बड़ी अच्छी फेम इनकी हासिल इनको मिली है और इस फेम की वजह से इन्होंने धुरंधर 2 मूवी में जो गाना गाया है उस गाने की वजह से मेरे ख्याल बेसिकली इन्हें फेम मिली। हालांकि इससे पहले भी ये सिंगिंग करती रही हैं और जब इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये मुसलसल जो है वो रिजेक्ट किए जा रही थी। इनके जितने भी सॉन्ग्स थे उनको सारे रिजेक्ट करते थे महज इस वजह से क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो ना औरतों वाली थी और ना मर्दों वाली थी, तो इस वजह से इनकी आवाज़ को हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन जब कहते हैं किस्मत का सितारा चमकने पे आता है तो फिर आपको पता नहीं चलता रातों रात आप किस तरह वायरल हो जाते हैं, तो इनके साथ भी यही कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन्हें काफ़ी जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया उसके बाद जाकर इनकी आवाज़ को लेकर। खैर जिसको बस नसीब जिसका चमक जाए उसका चमक जाता है। आने वाले दोनों तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम ड्राइव टाइम है। बंदर अजीज उस्मान खान आपके साथ फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से। अगर आपका कोई फेवरेट ट्रैक है आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए आपके मर्ज़ी का ट्रैक भी शामिल कर दूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको प्रोग्राम में मेरा साथ देना होगा। 01157100971 पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएंगे और जो भी आपके पसंदीदा गज़ल नज़म चंद अशआर कोई कोटेशन कोई बात कोई सलाम कोई दुआ या किसी नाम कोई खास पैगाम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कासिद बन के आपका पैगाम जो है उन तक लेकर जाऊंगा खुद। मेरा ख्याल है इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। खैर जनाब जब तक आप मैसेज करते हैं तब तक आपको एक और खूबसूरत सा ट्रैक सुनाते हैं। उम्मीद है कि ये ट्रैक आपको जरूर अच्छा लगेगा। इस ट्रैक उस बार होगी आपसे मुलाकात रहेगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
11: 97.1 FM।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं लुटके वापसी से, उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ और मैं आपके साथ साथ हूं और हम दोनों इसी तरह साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और यकीनन इसमें आप लोगों का जो मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, जो रह गए थे, उनको शामिल करेंगे और आपकी जो फरमाइशें मेरे पास हैं उनको भी गाहे बगाहे प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वही चीज़ फिर से कहूँगा कि लास्ट सेगमेंट हमेशा हमारा पंजाबी ट्रैक्स का होता है। तो आपने जो भी फरमाइश करनी है वो पंजाबी ट्रैक की कीजिएगा ताकि मुझे लगाने में और आपको सुनने में आसानी हो। और बेहद शुक्रिया आपका कि आपने फजा 97.1 FM को ट्यून कर रखा है, या फिर आप हमें फजा डैप पर सुन रहे हैं। इसके अलावा भी आप हमें सुन सकते हैं जनाब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। उसके लिए आपने गूगल पर जाकर लिखना है radiofaza.co.uk, या चाहे तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है। और आप किसी भी रास्ते से आना चाहें, सभी रास्ते ओपन हैं, आप किसी भी रास्ते से प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किसी दोस्त, किसी प्यारे, किसी चाहने वाले को कोई पैगाम पहुंचाना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी जगह आपका पैगाम उन तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो कोशिश कीजिए कि उसकी नाराज़गी को आप ख़ुद ख़त्म कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी नाराज़गी को ख़त्म करने में आपका साथ दे सकूँ। किसी प्यारे के नाम कोई खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करवाना चाहें कोई नाराज़गी की बुनियाद पर, तो मैं आपके लिए ज़रूर उसको शामिल कर दूँगा। फिलहाल ये गैंगस्टर सब म्यूज़िक इन्जॉय कीजिएगा, लौट कर वापस आता हूँ। बस आपके साथ साथ हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा।

वल जनाब वक्त पहुंचा है आपसे इजाज़त चाहने का, और इजाज़त चाहने से पहले आप तमाम तरसती समातों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दिया और अपने होने के एहसास मुझे दिलाया। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.01 FM ऑल्सो डैब प्रोग्राम कॉल ड्राइव टाइम। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अब अपने मेज़बान उस्मान खान को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका और मेरा सबका अल्लाह निगेबान।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: सासेदारे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: फजान 97.1 FM।
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: टर्न इट अप रेडियो।
14: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।